अस्सलामुअलैकुम अजान संग जी वेलकम टू द लेट नाइट शो आपको सिर सलाम मीर सलाम मेरी सब सिस्टर को जी मेरी तरफ से जनान असमाद दफ्तर तराशा चुके तलीम अफसर वाला गोम अच्छे शाज अमर वत पूरे खुशहाल शिक्षक दरमन अच्छा

बैंड मैनेजर नाजमान खटक जंजी फ्रॉम डी हाँ भाई आपको गला खराब है भाई आप अभी ठंडा पानी यानी बर्फ वाला पानी से परहेज करिए अभी मौसम चेंज हो रहा है और आप ऐसे हो ढेर मन खुश करो ढेर मन खुशहाल से लैला है दूचे अनमोल सारा मैं सुध हिन वकार दिलान वफा शांत डले एक जनाजे के हाथ सारा जहां निकला एक वो ना निकला जिसके हाथ जनाजा निकला ए सनम मैं कैसे आती तेरे जनाजे के पीछे मेरा अपना ही जनाजा तेरे जनाजे के पीछे निकला खैर लैला है दिल रशीद पीछे तू तो डाले फसे पुजड़ो लता सलीवर को خوشحال